0: पसेल मने कलम का करो
1: ना ओजर को करो मरो फेरवा लपी आंगा बा
2: ना ना बते का रे तो पोहो ला बा ना का मो जरो बा ता की ला बा
1: ए ओ लामला बरा बुक आ आदि तो होबो नुला बला